सही महीनिया च बौरा कौन है, दीवाना कौन है? तो दीवाना जानिए जा साहेब तरे प्यार। अगली तो प्यार ना सुनना, साहब कहंदे ने मंदा।

0: जल बिन कुंभ न हो, ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो, ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: पापा जी ताड़ी ऐस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा
2: आसरा उस दा आधार दा मैं देख सेवादार हां।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उतर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
2: अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी भी मन में जल लग रहे हैं, थोड़े को हजारे यात्री आते जाते, शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता?
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी, पानी की एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी, जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने?
3: हां बाबा जी, ते नाल ही आवाज आ रही सी।
4: कागू हंस करे,
2: कागू हंस करे, कागू हंस कर, ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ, उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है, गुरु नानक दी अलाई बाणी दा सोमा।
4: गुरु अमरदास?
2: हां बेटी, उन्होंने हर चीज का ज्ञान है, उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाणगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल?
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है, उत्थे बेड़ी पैंदी है, बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा, कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पईआं जिवें कोई ढोल वजा के निशान लै के उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पईआं। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो, कोई भी उच्ची विचारधारा वाला ग्रंथ चुक लो, सारे ही कहंदे ने जे जीवन विच प्रभु दा नाम नहीं ना ते बाकी सारियां गल्लां होचियां ने, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। हां जिन्हां ते साहिब दी रहमत होई, जिन्हां ने पल्ला फैलाया है अपना, जिन्हां ने झोली अड्डी है मालिक दे दर ते, ए कह के कि मैनू चा बख्शो अपना, विसर नाही दातार अपना नाम दियो, ए कह के जिन्हां झोली अड्डी है उन्हां दे साहिब कहंदे ने नाम निधान अपार भगतां मन वसै, भगतां दे मन च वस जांदा है ए अमोलक खजाना, नाम दा अमोलक खजाना भगतां दे हिरदे च टिक जांदा है, उन्हां दा ध्यान लग जांदा है, कदे सोचना चाहीदा उन्हां दा ध्यान लग जांदा साडा क्यों नहीं लगदा, सिमरन विच भजन विच साडा मन क्यों नहीं लगदा, ओ भी महाराज ने कारण दसे, मोह बाद हंकार जदों भी हिरदे च नाम ना वसे, नाम दा कसूर नहीं गिनना, सोचना अंदर लंघदा क्यों नहीं, अंदर टिकदा क्यों नहीं, अंदर कोई कसर होगी, अंदर कुछ ऐसा होगा जेड़ा नाम नू अंदर लंघन नहीं देंदा, अंदर टिकन नहीं देंदा। धन गुरु नानक पातशाह ने बड़ा प्यारा वचन कहा, साहब कहते ने रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। सोना खिंची जा रहा है, सोने नाल मन लग गया, सोने दी पकड़ बन गई, रस सोयना सोना पाउण दा, सोना वेखण दा, सोना विखाउण दा, कठा करन दा स्वाद पै गया। इसे तरह चांदी दी गल कीती, रस सोयना रस रूपा, एक रस अखां दा भी पै गया, रस सोयना रस रूपा कामण, रूप नाल मोया गया, हर वेले रूप वाले पासे ध्यान है, किसे ना किसे ढंग नाल मालक दी रचना है, चित्र वाल ध्यान है, चितेरे वाल ध्यान दे, रूप वाल ध्यान है, रूपमान करने वाले वाल ध्यान नहीं है। साहब कहंदे ने इस तरह कामन वाल खिंचया होया बंदा, रूप वाल खिंचया होया बंदा, रस परमल की वास तरह तरह दी खुशबुआं वाल खिंचया होया बंदा, रस घोड़े रस सेजा मंदर सवारियां दी इच्छा लेके सवारियां दी इच्छा नाल भरिया बंदा, रस मीठा रस मास तरह तरह दे खाण दे पदार्थां दे रस च रत्ता आ बंदा, एते रस शरीर के धन गुरु नानक कहंदे ने इन्ने स्वादां दे मगर लग्या होया तैनू नाम दा स्वाद कित्थों आ, नाम दा स्वाद अंदर टिकाउण वास्ते तैनू कोई थां तां बनाउणी पैगी, कित्थे टिके, कोई बंदा आ जांदा घर विच ते आखीदा साडे कोल तां थां ही बड़ी थोड़ी है, कित्थे टिकाइए तुहानू, अगे ही कई जी इकट्ठे होए हुए आ, इक कमरा है उहदे च किन्ने जणे रहिंदे आ, गुंजाइश ही कोई नहीं किसी होर दे रहण, ए अंदर हिरदे विच भी किन्ने ही जी इकट्ठे कर रखे ने, नाम वर्गे उचेचे मेहमान दे वसण दी थां नहीं। साहिब कहंदे ने जेड़ा बंदा थां नहीं दे सकिया ना, जेड़ा अंदरों गैर जरूरी रसां नूं कढ के जरूरी रस नूं अंदर थां नहीं दे सकिया, उन्हां दे बारे साहिब कहंदे ने मोह बाद हंकार सर पर रुनिया, हंकार अंदर टिकिया रहण दिता, मोह अंदर टिकिया रहण दिता, झूठ अंदर टिकिया रहण दिता, अखीर की होया उन्हां तां कोई नहीं प्रसन्न करना, इन्हां अंदर टिकिया ने तां कोई नहीं स्वाद देना, इह तां रुआउणगे अखीर विच, मोह भी रुआवेगा हंकार भी रुआवेगा झूठ भी रुआवेगा, सुख ना पाएन मूल नाम विछुनिया, मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, अपने आले दुआले आप ही बंधन फैला रखे, मैं मेरी दे चक्कर विच ए मेरा है ओ मेरा है, मैं फलाने दा फलाना मेरा है, इस पकड़ दे विच नाम नाल मेर पैदा नहीं कीती जा सकी, वाहिगुरु नाल मेर नहीं पैदा कीती जा सकी, ते फिर की होया नरक सुरग अवतार माया धंधिया, माया दे धंधिया च फसिया होया जमन मरना बनिया रहा, नरकां सुरगां दा चक्कर चलदा रहा, साहिब कहंदे ने सोच सोच के विचार विचार के सोध सोध के अखीर नतीजा ये कढ़िया, सोध तो सोध तो सोध तत विचारिया, नाम बिना सुख ना है।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आए वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दी, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दी ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

बहुत लोग गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सेवक बन गए, पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते।

एक कसम लिख के भेजी के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बारी तुसी किला खाली कर दियो किधरे होर चले जाओ। मैं कसम खाना कुरान शरीफ दी के तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा।

एक कागज लो। उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नु प्यारी समझे, कागज लिया उत्ते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियां समेत मुश्किल दे समय गुरु नु छड़ के अपने घरां नु तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओ ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

अपने घरां नूं पहुंचे। घरवालियां ने पुछिया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड़ के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड़ के आए हां, ते नाल ए भी लिख के दे आए हां, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। ए गल घरांवालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्हां ने कहा, ठीक है, अज गुरु नूं छड आए, अपनी जान नूं प्यारी समझ के, एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवोगे, पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तों सिख गवा के जीवना, को जीवना है, एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे, गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनिया जाना वार देंदे, ता असी शुकर करना सी, साडे पति तन ने जेड़े सेवा करदे मरे, अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नू छड़ के आए हो, मौत तू बहुत डर लगदे, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे, इस तरह करो, इस साड़ियां चुनिया ले लो, पग्गां ला दे, अपनिया चूड़ियां ला के अगे रख दितियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कस्से खोल के सानू दे, कमर कस्से करके असी जावांगियां, असी

मिया खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता सिखी छड़ दिती पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी को जीवना है सिर झुका के जीवना कोई जीवना है। धर्म वास्ते मरना धर्म दे राह ते चल के मरना देश कौम दी सेवा करदिया मरना

आनंदपुर साहब का किला गुरु साहबा ने छड़ दिता क्योंकि सिखा ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ की कसम खाधी उन्ना कसमा तोड़ दितिया, जिन्ना आटे की गऊ बना के कसम खाधी उन्ना भी कसमा तोड़ दितिया। गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी

हड्डियां दा मजबूत कमर कस्सा कीता है ए है भाई मान सिंह म्यान विचू कृपान खिची जकारा छड़िया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार के किया भाई मैनू अज गुरु दे हुकम दा पता लग गया मैं अज ए फैसला कर लिया हम तो गुरहित दे हैं प्राण

के जीवे ता क्या जीवे। सेवा करदे हां सिखी निभांदे हां मौत होवे ता जीवन सफल हो। ए गल भाई मान सिंह ने कही ता माई भागो हाथ विच सांग फड़ी इस वी लकीर टपी

ताकि दूरों कोई देखे ते पता लगे कि गुरु दा दल ऐस पासे। खिदराने दी टाप तो थोड़ी दूर एक उची टिब्बी ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिंघां समेत मोर्चा संभाल के बैठ गए। एक सिख दरखत ते चढ़े

खान दे जरनैलां सरदारां नूं लगदे ने ते उहनूं बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दियां लड़दियां 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां, किरपानां कढ़ियां, हत्थां विच ढालां फड़ियां, जकारे छड़ दे बेरियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली दी तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा किरपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रण शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नू भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने रणन छत्र गाहे रणन कहंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नू अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोऊ बड़े उत्साहे परे शस्त्र मारे महा जंग माहे कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सो छाले उछाले म्यान विचू तेग कढ़ी हथां विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखिया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह दा डंका बजाया वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुंह पे है सैंकदा पे है सह टुटदे ने हुण भाई मान सिंह अरदास पिया करदा है।

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं, हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पाड़ दे जिदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं।

उस जगह ते नाले वर दिता। इस जगह का नाम हुण मुकत सर होवेगा। जेड़ा इत्थे आएगा प्यार शरदा नाल ओ मुक्ति नूं प्राप्त होवेगा। ओ जो मंगेगा उस नूं प्राप्त होवेगा। अज जदों भी कोई मुकत सर जांदा है गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदा है, ओ इन्हां शहीदां नूं भी मत्था टेकदा है जिन्हां ने सेवा बदले जाना वारियां, जाना दे नाल प्यार नहीं कीता,

बैठे दो कड़िया वास्ते पर भाई सब लिखते ने आए संत ब्राह्मणे कीर्तन होवा रहन सबाई।

खंडे खंड प्रचंड पार पूर्ण प्रेम की प्रीत तुम्हारे पार न पाए सके पद्मपति।

मन विच खुश है मेरा बच्चा हुण खेडण जोगा हो गया। इन्हें एदे हाथ विच एक छोटी जी गेंद दे दित्ती। बच्चा इस गेंद नाल खेडदा पिया है। मां इस दे हत्थों गेंद लेंदी है, दूर वगा के मार दी है। बच्चा भज के जांदा है, गेंद चुक के लियांदा, फिर मां नूं आके परेशान करदा है। मां फिर उस गेंद नूं लेके दूर वगांदी है। बच्चा फिर भज के जांदा है। इस प्रकार नाले ए मां अपना काम पई करदी है, नाले अपने बच्चे नूं खेडदा वेख के बड़ी खुश हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है। मन विच उमंग है, मन विच खुशी है, मेरा बच्चा हुण खेडण जोगा हो गया। इसे प्रकार कुछ समा बीतिया। इस वारी बच्चे ने गेंद लिया के फिर मां नूं दित्ती। मां ने बेध्याने होके उसे तरह फिर गेंद वगा के मारी, दूर सुट्टी। इस वारी ए गेंद जेड़ी सी बनेरी नाल टकरा के थल्ले जा पई। मां अपने कम विच मशगूल है। इधर ए बच्चा पहले वांग ही भज्जा उस गेंद दे पिछे। हुण बच्चे नूं की पता है कि ए बनेरी तों अगे कोठा खत्म है। छोटा जा बालक, मासूम बच्चा गेंद दे पिछे भज्जिया, गेंद ते टकरा के बनेरी नाल ओ थले डिग पई। ते बच्चे ने जो ही गेंद दे पिछे भजना शुरू कीता, ओदा भी ध्यान चुक गया ते बनेरी नाल

जो भी श्रद्धा नाल इस पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुणदा है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृत बाणी, जिस बाणी प्रथाएं

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा एक थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन।

बड़े प्रसन्न होए। भाई सहदे दा प्यार वेख के हिरदे नाल लाया, आख्या भाई दया सिंह देश नूं मोरा इहदी गरीबी कट दे। भाई सहदे ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज।

0: पहले की देख, तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगे?
0: खुंडकारा लकड़ी के उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जाता है।
1: पटरा क्यों लगे?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोते ने। भगत नामदेव जी दात दे छीने सन, कपड़े धोंदे धोंदे हो अपनी आत्मा नु हरि नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उंगली टेके जिनी के पटरे नु खुंदकारे।

उसे सरा संसार से बुद्ध तदमन उपमा परणत सुख या मैं रंजन मिथ्या भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी रोम रोम जे रसना पावो तदब खालसा जस तै गाऊं रोम रोम जे रसना पावो तदब खालसा जस तै गाऊं हो खालसे का सबके।

मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखे है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते दे जांदा है, ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते

है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच सै जुगाद विच भी सच सै हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। ए उपदेश लेता इथे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेही नदी विचों बाहर ना निकले मर्दाना डरिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए। बाला भजिया

दस में खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो

हर्ष मेरो भवन भंडारा, हर्ष मेरो करत उधारा, हर्ष मेरो सजन परवारा।

अणतारू जरा थोड़ा बहुत तरना जानता हो सगू उल्टा आप नाल डुब जाता है। ऐसा ना हो मैं बुराइया का मारिया हो किसी भगत नौड़ी करने वास्ते कह किसी गुरमुख नव मेरी भी बांह फड़ लवे ते ओ अजे अणतारू हो वो मेरी बांह फड़े मैं उन्हें फिर माड़े पासे लै तुरा नहीं क्यों ना मैं तेरा ही लड़ फड़ा। सर्व कला प्रभ पूर्णो मुकम्मल है तू हर तरह समर्थ है मेरे बादशाह मंझ निमाणी था मैं निमाणी का होर कोई टिकाणा नहीं तेरे बिना हर ओट कही मन अंतरे भगती वास्ते गुरसिखी वास्ते नाम जपन सत्संगत करने वास्ते मैं तेरा आसरा लेना मैं होर कोई आसरा नजर नहीं आ जप जप जीवा नाम मेरी इच्छा है कर कृपा प्रभ अपनी तू रहमत कर मेरे साहब मेरे ते कृपा कर जन धूरी संग समाओ तेरे भगतां दे चरणा दी धूड़ी विच मेरा टिकाणा होवे उन्हां दी संगत विच मेरा वासा होवे ज्यों तू राखे त्यों रहा तेरा दिता पहना खाओ अगे भी तेरिया बड़िया बख्शां ने पर इस रहमत दे बदले विच जिस हाल विच तू रखे मैनू रहना परवान है पर मेरे ते कृपा कर भगती वाले मालिक ते मैनू धू के ला ले उत्तम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ बहुत उद्दम मैं आपे ही कर लेने कई गलत तरह के उद्दम मैं आपे ही कर लेने कमाई वास्ते उद्दम मैं बथेरा किया उस कमाई नू रोड़न वास्ते बड़ा उद्दम किया संसार नाल कच्चियां सांझां पाउण वास्ते मैं बड़े उद्दम किए पर जदों भी सत्संगत दा भगती दा उद्दम करन दा सवाल आया मैं आम तौर ते आलस कर गया मेरे मालिक मेरे ते कृपा कर ते मैनू ओ उद्दम करा उद्दम करो मैं करदा उद्दम पर मेरे कोल हुंदा नहीं काम औखा है ना मेरे कोल निभदा नहीं उद्दम करो करावो ठाकर साहब तू करा ए उद्दम मैं करदा तू करा मेरे तो और सच जाना जिस वेले ए भावना लैके बंदा तुरे ना मैं उद्दम करदा ते बाकी सिरे चाढ़न दा काम तू कर। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ी प्यारी गल कही वो कहंदे ने चरण शरण गुर एक पैंडा जाह चल तू गुरु की चरण शरण एक कदम चुक पर एक कदम तो चुकना ही पेगा जे तू आखे मैं कुछ भी ना करा मैनू बिस्तरे चो कढ के लै चले गुरुद्वारे ए तो नाजायज गल ए अयोग मंग नीयत ही बना लै तू थोड़ा जिहा मन ही बना लै एक कदम तो चुकना सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेता बाकी सबीला महाराज आपे बना देगा तू नीयत ही बना लै तू मन ही बना लै कि मैं सिखी दे मार्ग ते तुरना एक कदम तो चुकना जे तू एक कदम भी नहीं चुकेगा तू ओदे कोलो की आस करना कि करोड़ा कदम अगे होके तेन लै तुरे एक कदम तू चुक एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र तू अपने सतगुरु नू एक बारी चेते करन मात्र जबान ते तलिया तू एक बारी प्यार नाल धन गुरु नानक ता कहो एक बारी तू प्यार च भिज के वाहिगुरु कह के ता वेख सिमरन ता है बारन बार गुर हेत है वह तेन लखा बार याद करेगा। एक गल प्रसिद्ध है इस्लाम विच उह कहिंदे ने कि बंदा एक बारी हाथ उठा के कह देवे ना या खुदा बंदा ते खुदावंद सत वारी कहिंदा है या बंदा या बंदा या बंदा या बंदा या बंदा सत वारी कहिंदा लेकिन भाई साहब कहिंदे ने नहीं बहुत थोड़ी गिणती है तू एक बारी खुदा बंदा कवे वह सत वारी कवे तो बड़ी छोटी भाजी तू एक बारी याद कर वह तेन लखा बार याद कर बैठी एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है प्यार नाल याद कर पावनी भगत पाए कौटी अग्र भाग रख है अग्र भाग भाव चरणा विच सामने लिया के हाजिर कर दे एक कौटी भी प्यार नाल अचला के मारन वाली गल ना हो माफ करना या दानी बन के ना मैं गुरुद्वारे दिते ने ना इथे ता अर्पण करना तेरा किया तुझे क्या अर्प मैं दे की सकना तेरी दात विचों आ तेरे ही अगे निगूणा जिहा प्यार भेटा करने वास्ते एक जतन है दे की सकना मैं मंगता दे की सकना दाते दे अगे दे की सकना मैं पावनी भगत पाए प्यार नाल भगती ते प्रेम नाल भिजिया होया कौटी अग्र भाग राखे ताहे गुर सर्व निदान दान देत है उस सतगुरु दे पासो ए मंग मंगनी के पातशाह कृपा करो तुसी उद्दम कर करदे नू करा लो मैं उद्दम करदा तुसी करा लो इनू सिरे चाढ़न दी समर्था तुसी बख्शो उद्दम करो करावो ठा

पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने कि बंदगी करदा हां ओदी महान कृपा नाल, सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी जात दा हो के लोग इन मत्थे टेकते ने। हैं ए क्यों? बंदे दा सुभाअ है, बंदा किसे दी वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करदा, किसे दी प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करदा। कबीर जी नूं ए सजा दित्ती गई कि इनू पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पा के गंगा विच सुट दिता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझदे ने, ते बंदगी वाले पुरुष नूं गंगा विच सुटन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया ओदा जिक्र कीता है। पर कहंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने ओदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। आओ।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही। कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान। कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही। ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी? क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले

आखदे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम बिना सिमरन दे बिना सेवा दे तेरा जितना जीवन है ओ किसे कम ना आया ते जे तू सेवा सिमरन नहीं कीता ता गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे ने फिर तेरे नालों पशु लख गुणा चंगा है पशु मरे दस काज सवारे पशु जीवंदियां भी का खा के दुध देंदा रहा मर गया उसका चमड़ा कम आया उसका मास कई जीवां दी खुराक बनिया उदियां हड्डियां कम आईया ऐ मनुख जे तू मनुच्छा जन्म पा के सिमरन नहीं करदा सेवा नहीं करदा ता दस तेरे शरीर दा की बनेगा अगन भेटी कर देंगे ना तू ता मोया भी ते जीवंदियां भी कम ना आयो ता तेरा संसार ते आया किवें सफल होवेगा इसलिए हजूर कहंदे ने रंग मान लै प्यारिया जां जोबन निहोला दिन थोड़े थके पर।